सुगत लोना समुद्र राजा में वचन आन मोहतेम अपे हदवते गैमुरट पुण्य सुनदक सेमिंग एवित पिरनो बुद्ध पियान वान से गे अपूर करुणाव अपे जीवते अंदुर मोहतगदी आलोक्यक वगे हदवते ते वैटेनो अपे हमोम जीवते दुकद